0: Gospel Show. Gospel Show.
1: उकावार अली की बना हूँ, सिरी सिरी की वो नहीं, रोई रोई की, इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिरी सिरी की इथोनी, नी दियोगा की इदा सिरी सिरी की हाना जजा खाने, नी दियोगा की जाबुनी हाना जजा उखाने।